0: हमारे नाना नानी हिंदुस्तान से आते हैं, लेकिन हम वडलूप से हैं, हम वडलूप हैं.
1: نحن غوالوبيين أصل لبنانيين ومبسوطين كنا غوالوب.
2: Guadalupe, mi segunda tierra, mi hogar, la patria de mi hijo.
3: Guadalupe is my home. There's no place like home. You know, we see DA from Guadalupe. We see Guadalupe from DA. So you see, this country.